0: सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती, दुनिया फोर ट्वेंटी, दुनिया पक्की फोर ट्वेंटी।
1: जहाँ भी देखे कोई हसीना वही बजा दे घंटी।

ये मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी, जहां भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी, दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

हे आत्मतुल्य श्रोतागण, इस संसार की उत्पत्ति के कारण स्वरूप नटराज शिव शंकर भगवान की अपार करुणा हम दीन जनों पर बरसे और बरसती रहे, इस शुभकामना के साथ आज हम सब शिव स्तुति का प्रारंभ।

0: चाहे हंगामा कहां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या
1: हमें काले हैं।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले

मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक। धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, पटलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पटलीपट्टनम, उंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल उंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोटनूर पोटनूर शोटनूर पोटनूर, चुक चुक चुक चुक चुक चुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक

Live vanuit de Hoogstad. Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, गायक किंग की आवाज में। एक और गीत पेश है अब, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ।

घूमता मौसम और मस्त महीना। फिल्म उजाला का गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और गाने वाले मन्ना दे एंड लता जी।

मैं जाऊंगी मेरे पीछे न आना चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी से आप सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, लता जी के साथ अब आप सुनेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद साहब को।

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, आप हरी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम नमस्ते और आदाब। आज इतवार 19 तारीख के जुली का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप हर को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद ये अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तोला चाह रहे थे उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम का पैगाम जो आप लोग सुन रहे हैं, यहां से आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा, 2 घंटे लगातार करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुकल है, 3 बजकर सैफन मुनिजनुफुद्री खुद में दखल माल आफरी को शुभ शाम। मैं हूं सुबह से गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक मैं आप सभी को शाम का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। आफरी को शुभ दिन। और चलिए यहां से पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी।

शाबाश शाबाश, भले प्रेम के कारण आज मैं जोगन ही बन जाऊंगा। अवसरों से स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वालों बैठक गाना का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, बैठक गाना हंगामा। और चलिए अब की बार प्रोग्राम में एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

सा जादू मुसाफिर तोरे बोले, और इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड चलिए अब की बार फिर से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है स्वर्गीय दैश्य रघु सिंह जी, और इस गाना को मांग करने वाले और मेरे मैं खासर के भाई मनोज मुंगार के लिए।

शाबाश शाबाश, पल पल बीत जाती उमरिया, प्यारा प्यारा बचपन का अवसरों से स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा, एंड चलिए हार्लम में सीता भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने।

आई बॉय पोंगे पोंगे डमाडो तमाती के चोखा, तमाती के चोखा, टमाटर के चोखा। राशि का दिन दयाल के गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर, अरे यार गनवा कैसे रहा, पोंगी पोंगी डमाडो, आई बो यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम लाने वाले हैं आप सभी के लिए। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और अब की बार गाने वाले होंगे प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी। एंड गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही गीत, खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में

दाल भात बांटा के चोखा एना सेकर दाल भात बांटा के चोखा बनी एंड इसी तरह से किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में आप लोग सुनी। बोले कि बोले रतिया के तो के देख के बोले मोहे नींद ना आवे, बोले यार कैसे हो सके है। एंड चलिए इस बार गाना को मांग करने वाले हैं सुतमेर में शांता करिश्म छेदी के आवाज में।

चादर बिछाओ बलमा एंड इंदर लगे बोले सोए रह लेना कृषमम छेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं एंड परमन शहर में लक्ष्मी भी प्रोग्राम को सुने तो गाना पेश है आप दोनों के लिए एंड गाने वाले होंगे।

आलू के चोखा, बैगन के चोखा, टमाटर के चोखा, वेल टमाटर के चोखा, जो भी चोखा बनाओ सब लेकर यार। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और अब की बार देखा जाए, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा गीत प्रोग्राम में हम ला रहे हैं।

0: और चलिए प्रोग्राम में गाना पेश है।
1: मीनो के माई
0: और रेखा जय राम शरण सहित उसमें बैनी राम शरण।

शाबाश पात्र मोरीकर यहीं दुई बोले बालम। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे सुरेश हीरा की आवाज में, युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। और हर एतवार की तरह घर के काम हो गए हैं, घर के सफाई हो गए हैं।

बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश अब उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो दिस खयाई बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और इस आखिरी भाग में बैठक गाना आखिरी भाग में जो गाना आप लोग सुनेंगे एक और बहुत ही प्यार प्यार प्यार खाली प्यार के गाना हुई। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो आओ मेरे में माला मुंगार प्रोग्राम को।

की क्रिकेट दिन के दाने डाले और इधर से रोबिन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम और घर के काम जोर तोर से होवे सब कोई मिलाकर कमवा करे है।

चलिए हमारे प्यारे सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं कुछ और बैठक गाना से। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए एकदम बेल्जियम में बैठ करके सुने सुनीता, और सुनीता के लिए गाना पेश है और गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।

आई बॉय शाबाश शाबाश, रात भर हमें सूते ना देवे। आउट देखा जाए अमस्त्रम आकर में अर्जुन बिहारी प्रोग्राम को बड़ी कृष्ण है।

शाबाश शाबाश यार, अकिया मिला के एंडिया तरसा के बोले चले नहीं जाना। और इस तरह से क्रिशम छेदी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो यंग टाइगर वो बैठक गाना खास करके, और गाने वाले होंगे विशाल हीरा। और ये गाना को मांग करने वाले लाइस फेन शहर में, जहां पर इस वक्त सानू जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम और मोई से सुन ले।

वाले शाबान शाबान हमार रनिया हमार रनिया बता दे सच्चे बतिया। अब इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह ना यार विशाल ही राजी और देखा जाए फियानो शहर में जहां पर राम सुख भी प्रोग्राम को बैठ

से। वाओ वल यार कर मुआना बाचे कोई हमसे, अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड आशा है कि आप सभी को भी पसंद आए वो होंगे। और हमारे प्यारे सुने वालों, अब की बार गाना जो प्रोग्राम

चना चना जोर गरम बाबू लाया मजेदार अवसरण से देवानंद गातो के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। ए आज के खेल वक्त कितना स्पंग है स्पाइन अर्खतिनिया या बॉय एन सभी भाउजियन के लिए गाना पेश है। अरे यार मसाला।

Salah and you are Ujala Radio yaar. Ujala Radio di Hot 1 Amsterdam shahar se program ko mana rahe hain. चाहे आप लोग जो चिकरत हो या तो मसाला पीसत हो या चाहे जो चिकरत हो ये प्यार से दुलार से पीसिए अनी वाला पत्थर मोरी कर यहाँ

बाला बल्लम के बाद छोड़ एंड चलिए बैठ गाना की ओर। फिर से हम आप सभी को ले चलते हैं और हमारे प्यारे सुनने वालों, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, अम्स्टरडम से प्रोग्राम को बना रहे हैं एंड अलक सोमदा फन द्री तत् फाइव आप लोग सुन सके हैं प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर से यंग टाइगर ऑफ बैठ गाना विशाल हीरा को हम ला रहे हैं एंड इस बार जो गाना आप लोग सुनेंगे, बोले भैया ताके लड़की, वेल तो लड़की ना तकिए।

की आवाज में। और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए तो घड़ी की तरफ तो करीबन करीबन करीबन 5 बजने वाले हैं और धीरे धीरे हम आप लोग से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग से इजाजत चाहेंगे। आशा है कि आज का बैठक गाने का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को पसंद आए हुए होंगे।

आपस में देखे तो निकल जाए, एंड भौजी के गुस्सा बोले निकल चले जाए। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और खान शिर के द यंग टाइगर ऑफ बैड गाना, खान शिर के विशाल हीरा।

और हमारा साथ देने के लिए बैठे गाना का प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले फिर से आने वाले सप्ताह इतवार को फिर हम आप लोग से मिलेंगे। आप लोग अपना इतवार का शाम और इतवार का रात तो मऊ से बिताइए, जो भी आप लोग करेंगे इस मौसम में प्यार से दुलार से कर लेना, नहीं तो ना करिए यार। हम आते बोले जो ची करना है आज कर लेना, कल कल कल तू ना देख लेना हम देख ली यार। अगर कोई से आपसे प्यार है तो बोल देना यार कि हमें तुम्हें प्यार है, वरना आपको पछताना पड़ेगा। इस इतवार का मौसम प्यारा प्यारा मौसम, तो लोग मोई से बिताइए, मोई से खाइए, मोई से पिए एंड मोई से रहिए। अपने आप की जरूर से ख्याल कीजिए। और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे यहीं पर जहां पर हम छोड़ के

एक तेरा साथ और हमको दो जहां से प्यारा है, लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से गीत आप सुने, फिल्म वापस से निकाला हुआ। और सुनने वालों, उजाला रेडियो, आपको मालूम है ना कि खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम।

0: तेरा बन जाऊंगा अनमोल नंबर आइट कबीर सिंह
1: दिल की हिस्सा
0: एंड अब हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब।

जिस्म दो है और एक जान। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। उजाला रेडियो है ये। De leukste, ja toch? En de gezelligste, ja toch?

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: बहुत अच्छे मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: अशोक

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की साज पर जाओ जी जाओ, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़िया पहन लो, एक घगरा सिलवा लो। सितारों का सितारा उजाला रेडियो का पैगाम है और मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपकी खिदमत में नशर है।

द फर्स्ट लेडी म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना के साज पर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ सिलेक्शन आशा भोसले और रफी साहब की आवाज़ों आपने भी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। और भी सिलेक्शंस आपकी खिदमत में नशर है और फ़ोन का नंबर है 02-409-0807 रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते या तो info@ustarchujala.net

हम भी समझे जीवन के ये रास्ते लंबे है सनम, कटेगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। अच्छा जी महारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं, सभी को एक बहुत ही शुभ दिन अर्ज है। आप हमें जहाँ से और जिस हालात में भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे।

बहुत ही खूबसूरत रोमानी सिलेक्शन आपने भी सुने हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जा, सीखा है तुमने जहाँ से? युवाड़ का पैगाम है और फोन का नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन पर 02049 09 08 07।

हमारा नंबर आप जरूर नोट कर लेना 024-09-0807 या तो ईमेल द्वारा भी आप हमें खबर भेज सकते हैं और पता है info@starjeujala.nl

बहुत ही रोमानी सिलेक्शन आपने भी सुने। आंसू का हमारे गम ना करो, वो बहते हैं तो बहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। सितारों का सितारा उजाला रेडियो, आपकी दिलों की धड़कन और आंखों का तारा।

मेरे जुड़े संगीत में इस बार आप सुनिए, आज मौसम है बड़ा बेईमान है बड़ा आज मौसम, मिक्स मार्क सॉन्ग्स में आपकी खिदमत में ये सिलेक्शन भी अर्ज है।

सनो एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। या नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में आप सुने। एन एक मुत तुखीफ़ ये मुत वेल फन द स्टाइल होल्डन फन नुसरत अंदर्स नहीं अंदर्स फिंच इट गवोन नीट मोई। मार अगला जो हम आपको अगली गज़ल जो आपको हम अब सुनाने को जा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज़ में, तो ये गज़ल जो है अगर जो बीते गज़ल आपको नहीं पसंद आए हुए होंगे तो ये गज़ल जो है तो ज़रूर पसंद आएगी आपको, सुन लेना।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता मेहंदी हसन से आप सुने। उजाला रेडियो, गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर।

चले जाओगे तो सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, हाँ, इन दोनों से आप गीत को सुने। और अब अगली गजल जो है अशोक खोसला की आवाज में पेश है। एक बार फिर शुरू करता हूँ। हाँ, पेश है।

तुम्हें प्यार करने के जी चाहता है, अशोक खोसला की आवाज में गीत को आप अभी सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और पेश है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

ना सकोगे मुझे तुम नज़र से गिरा रहे है। आप इस गीत को गज़ल को सुने मेहदी हसन की आवाज़ में, और हम आपको एक राय दिए थे, याद है? अगर इस प्रोग्राम से और ज़्यादा लुफ्त आप उठाना चाहें तो घर के चिराग जो है कम कर दीजिए, रेडियो की आवाज़ और जोर कीजिए, आंखें बंद करके फिर सुनिए।

ने जवां दिल के धड़कनों को गिन के बता कि दिल में प्यार है कि नहीं। आप सुने जगजीत सिंह से, हाँ जगजीत सिंह से, झुकी झुकी सी नजर है। अच्छा लगता है। अगर ऐसा हो तो आप एक ईमेल भेज सकते हो info@ujala.nl हमारे पास। अगर ना अच्छा लगता हो तो भी, हाँ तो भी ईमेल आप भेज सकते हो।

अब एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। पंकज उदास की आवाज में आप गजल को सुने उजाला रेडियो पर, गीत और गजल की दुनिया हमारे साथ आपकी खातिर।

वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। और इस गीत और गजल के प्रोग्राम में अब हिस्सा लेंगे गुलाम अली साहब।

का इस हिस्सा में आखिरी गजल को आप सुन रहे हैं। बहुत जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के। हमारा इंतजार कर लेना जरूर।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। इस प्रोग्राम में गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, बातें कम करते हैं ताकि इत्मीनान से प्रोग्राम को आप सुन सकें। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को बनाता हूं कि आप सुनेंगे और पसंद करेंगे भी। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी कहना हो आपको, पसंद हो या ना पसंद हो, कुछ कहना हो आपको तो आप ईमेल भेजिए, पता है info@ujala.nl। तो चलिए प्रोग्राम में पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज में पेश है।

झुकी झुकी सी नजर दिल में प्यार है कि नहीं, दिल में प्यार है कि नहीं। और गीत या तो गजल को आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में। पेश है अब एक और गजल और फनकार पंकज उदास की आवाज में।

लोग करते हैं नफरत शराब से, हमको मिली है जीने में राहत शराब से। और आप पंकज उदास की आवाज में इस सुंदर गजल को सुनें।

जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। अनुराधा पौडवाल की आवाज में इस गजल को आप सुने और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

दामन उलझाना मेरी आदत है, कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है, दिल में थोड़ा दर्द बसाना मेरी आदत है। जगजीत सिंह की आवाज में गजल आप सुने, और अब हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में चंदन दास।

चंदन दास की आवाज में आप सुने कि दिल रह गया हमारा एक बार मुस्कुराकर, गम दे गई मोहब्बत एक बार गुनगुनाकर।

रात ऐसे बिताई है तुम्हें याद किया है, रात ऐसे बिताई है तुम्हें याद किया है, जब नींद ना आई है तुम्हें याद किया है। पंकज उधास की आवाज में आप सुने। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। गुलाम अली की आवाज में इस सुंदर गजल को आप सुनिए।

ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। चंदन दास की आवाज में आप सुने। और अब आज का प्रोग्राम में आखिरी गजल।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

0: have fun on the radio.
1: Doctor ji, doctor ji, doctor ji, please ek baat sunti jaiye. Bas ek baat, doctor sahab.
2: Kahiye.
1: Wo jo aapne mere liye dua ki thi na, zarur sacche dil se ki hogi. Bhagwan ne sun li hai aur mujhe ho gaya hai.
2: Kya ho gaya hai?
1: Mujhe pyar ho gaya hai.
2: Achha, mubarak ho.
1: Lekin aapne ye to pucha hi nahi, kisse?
2: Arey ha, ye to main puchne bhul gayi. Kisse?
1: Ji wo.
2: बोली बोली कौन है वो खुश नसीब
1: जी वो खुश नसीब आप ही हैं
2: ओह थैंक यू वेरी मच माफ करना मुझे कोई भूख नहीं
1: सुनिए ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है
3: ओए चांद जी

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते